0: பசி பிரம்மா பிரம்மா
1: பிரம்மா பிரம்மா
0: ओके जनाब जॉम बॉयज ट्रैक तासो पर प्रोग्राम की शामिल हूँ और जॉम

0: अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में। जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, खुकुचरता ददग जवानको पवख बाने गम उनकलेशी न प रारवान वख की दग जवानके स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयल स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना द दग दानो चकम दागो न दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही की पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कम ची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और द दानो दागुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदीक कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।

0: back right after the commercial break.
1: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रابطہ कर सकते हैं।
2: This is not a test. This is the real thing. This is music life. The world is listening. Music life. This is where the music begins. Never stops. Music life.
3: 94 FM.
4: One voice, one nation, and one music station. Radio Dilbar, enjoy the life.
5: Man ka radio, bajne de zara.
6: Must music, must radio.
7: I can find new ways to motivate them.
8: Important.
9: And all that.
10: Real talk, real life, real people, real radio.
11: The station that just doesn't stop.
3: 94 FM.
0: Non-stop

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
2: सवाबी। ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हो, कुचर त दग ज्वानको पवख बानी गम उनक लेशी नुप रारवान वक्त की दग ज्वान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम ची द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासुद स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना द दग दानों चकम दागुन दी अगर हम प मुकम्मल तो गबाने खत्म हीगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्फ्यूलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कम ची सिर्फ और सिर्फ प सलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दाने और दानो दागुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: वाबस्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: ये है एक दुनिया इल्म व अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। द कादी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निज़ाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज़्ज़म मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवाबी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 0938-280103 पर रابطہ कर सकते हैं।
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: कलू द पारा शलारशमा
2: ओ फमीना बाज शारजा ज्वेलर्स दुकान दी चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स। Proprietor, Zeb Brothers, phone 0938-2765.

दिल तो यही चाहता था कि आज जल्दी आराम कर लिया जाए ताकि सुबह ताज़ा दम झरना उठ सकूं, लेकिन मेरे मोहतरम सामीन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त से नहीं मोहब्बत से निभाया जाता है, कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें थकन नहीं रोक सकती और कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जिन्हें अधूरा छोड़ना जो है ना दिल को गवारा नहीं होता जी। आपकी मोहब्बत, आपका एहतराम और मतलब ये कि आप लोगों का जो इंतजार है ना, आपके इंतजार और आपका एतमाद, इसी की वजह से हम आप लोगों के लिए यहाँ पे एफएम 94 रेडियो दिलवर स्वाबी के पैनल से आनेर हुए हैं। हम हर हाल में आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि मोहब्बत से जुड़े रिश्ते कभी जो है ना वक्त के मोहताज नहीं होते जी, और यही तो तेरी और मेरी बातों का सिलसिला है। ये सिर्फ जो है ना एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एहसासात का एक खूबसूरत सफर है। यहाँ लफ्ज बोले नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, यहाँ खुशियाँ बांटी जाती हैं जी, यादें भी, दुआएं भी और वो खामोश एहसास भी जिन्हें अक्सर इंसान अपने दिल में छुपा लेता है। इस महफिल में ना कोई जो है ना बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, यहाँ सिर्फ दिलों का रिश्ता होता है और यही रिश्ता इस प्रोग्राम की असल एक पहचान है भाई, असल इस प्रोग्राम की एक जान है और असल इस प्रोग्राम की मतलब जो है ना देखा जाए तो खूबसूरती है।

अच्छा, आज कोशिश की जाएगी कि आप लोगों के लिए मतलब ये कि कुछ थोड़े बहुत ट्रैक्स भी हम गुनगुनाएं, प्रोग्राम में शामिल करें, साथ ही साथ कुछ गहरी बातें भी होंगी। मजा भाई आप लोगों को आने वाला है। सो आप अपनी अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास दिलवाएं कि आप मेरे साथ साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। ताहिर जमान की आवाज़ सुन रहे हैं FM 94 से।

तूने दर्द मुझको दिया। ऑलराइट जनाब, हम इस ट्रैक को अब चेंज कर देते हैं और अब हम अपने खुमारी अंदाज में और अपने दूसरे वाले अंदाज में चल जाते हैं। आप लोग सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सोबी, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच FM 94 रेडियो दिलबर सोबी सुनने का।

लिसनर्स, एक बार तो फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ ताहिर जमान आप लोगों के संग संग, आप लोगों के साथ साथ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम 94 रेडियो दिलवर सौबी से। स्वीट लिसनर्स, जो लोग दिल में रहते हैं वो किस्मत में हों या ना हों जिंदगी पर असर जरूर छोड़ जाते हैं। मेरे मोहतरम सामीन, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें न जाने कितने लोग मिलते हैं। कुछ लोग चंद लम्हों के लिए आते हैं, कुछ बरसों तक साथ चलते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर हमारी ज़िंदगी से चल जाते हैं लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जा पाते। वो शायद हमारी किस्मत का हिस्सा ना बन सकें मगर हमारी शख्सियत, हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं या फिर ऐसा असर रखते हैं जो उम्र भर हमारे साथ रहते हैं।

हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में। हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। मैं लिसनर्स बात करना चाहूंगा यहां पे कि बाज एतमाद का मतलब समझा देते हैं, बाज वफा का एहसास दिला देते हैं कि इंसान को हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। बाज लोग जाते जाते इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत बना जाते हैं। मेरे दोस्तों, दिल में रह जाने वाले लोग सिर्फ वो नहीं होते जिनसे मोहब्बत हो, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया होता है, हमारा हाथ थामा होता है, हमें हमारी खामोशी को समझा होता है, हमारी आंखों के आंसुओं की कदर की होती है और हमारे चेहरे की मुस्कुराहट की हिफाजत की होती है। लिसनर्स यहां ये बात भी कहना चाहूंगा कि वक्त गुजर जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की यादें कभी पुरानी नहीं होते। कुछ लोगों की यादें कभी पुरानी नहीं होती। कभी कोई खुशबू, कभी कोई गीत, कभी कोई बारिश और कभी जिंदगी का खामोश लम्हा, तब इंसान महसूस करता है कि कुछ लोग जिस्म से दूर हो सकते हैं मगर दिल से कभी दूर नहीं होते। मैं लिसनर्स ये बात यहां कहना चाहूंगा कि मेरे अजीज सामीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स आपकी किस्मत में ना हो तो इस चीज पर मायूस ना होइएगा। इस पर मायूस होकर अपनी जिंदगी रोक देना दानिशमंदी नहीं है। अल्लाह ताला हर इंसान के लिए बेहतरीन फैसला फरमाता है। बाज़ औक़ात जिस चीज को हम खुशी समझते हैं वो हमारे लिए आजमाइश होती है, और जिस जुदाई को हम नुकसान समझते हैं इसी में अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर रास्ते खोल देता है। इसलिए यादों का एहतराम कीजिए, लेकिन हाल को मत भूलिए। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी पर अच्छा असर छोड़ा उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए उनकी अच्छाइयों को याद रखिए और खुद भी कोशिश कीजिए कि जब आप किसी की जिंदगी से गुजरें तो अपने पीछे मोहब्बत, इज्जत, अच्छा इखलाक और खूबसूरत यादें छोड़कर जाएं, क्योंकि आखिर में इंसान के पास न दौलत रहती है, न शोहरत, न ओहदे रहते हैं, रह जाती हैं तो सिर्फ वो दुआएं रह जाती हैं, वो यादें और वो अच्छे असरात जो उसने दूसरों के दिलों में छोड़े होते हैं। स्वीट लिसनर्स, जरूर आइएगा, जरूर शामिल होइएगा। आप भी अगर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। 0307 270066 0307 270066

क्या आप समझते हैं कि खूबसूरत लोग नहीं, खूबसूरत रवैये हमेशा दिलों में रह जाते हैं। कल भी हमारा ये मौजू था और इस मौजू पर काफ़ी सारी बातें अधूरी रह गई थीं। मैं कुछ थोड़ी सी बातें यहाँ पे करना चाहूँगा। स्वीट लिसनर्स, इस तरह ना कि दुनिया में खूबसूरत चेहरे बहुत हैं, लेकिन खूबसूरत रवैये रखने वाले लोग बहुत कम हैं। वक्त के साथ चेहरे बदल जाते हैं, उम्र डल जाती है, हुसन मानत पड़ जाते हैं, मगर एक अच्छा इखलाक, एक नरम लहजा, एक मुखलिस मुस्कुराहट और एक खूबसूरत रवैया इंसान को हमेशा के लिए दूसरों के दिलों में जिंदा रखता है। इसलिए कहा जाता है कि खूबसूरत लोग नहीं, खूबसूरत रवैया हमेशा दिलों में रह जाते हैं। मैं लिसनर्स यहां ये बात भी कहना चाहूंगा, करना चाहूंगा कि जिंदगी में अक्सर यूं होते हैं ना,

स्वीट लिसनर्स कहते हैं, कहा जाता है ना कि जिंदगी में अक्सर कमी रह जाती है। जिंदगी में अक्सर क्यों कमी रह जाती है? जिंदगी आखिर है क्या? मेरे मोहतरम सामीन, कभी आप लोगों ने खामोशी से बैठकर खुद से ये सवाल किया है कि आखिर जिंदगी में हर चीज होने के बावजूद, जिंदगी में हर चीज होने के बावजूद भी एक कमी क्यों महसूस होती है? कभी दिल कहता है कि अगर फलां चीज मिल जाए तो जिंदगी मुकम्मल हो जाए, और वो चीज मिल भी जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर कोई नई कमी महसूस होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी आप लोगों ने नोट किया है या कभी आप लोगों के माइंड में ये चीज आई है? मैं यहां दोस्तों ये बात कहना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदगी, लाइफ, ये सिर्फ जस्ट सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि एहसास, उम्मीदों, ख्वाब या ख्वाबों, दुआओं, मोहब्बतों और इम्तिहानों का एक खूबसूरत सफर है। इस सफर में शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसे हर चीज मुकम्मल मिली हो। किसी के पास दौलत है मगर सुकून नहीं है, किसी के पास शोहरत है मगर अपनायत नहीं है, किसी के पास मोहब्बत है मगर वक्त नहीं है, और किसी के पास वक्त है मगर वो शख्स नहीं है जिसके साथ वक्त को वक्त गुजारने की मतलब जाने एक ख्वाहिश होती है, दिल को ख्वाहिश होती है। शायद इसीलिए जिंदगी में हमेशा एक कमी बाकी रह जाती है। मेरे दोस्तों, अगर मानवीय अंदाज में देखा जाए तो बाज़ औक़ात जिंदगी की सबसे बड़ी कमी किसी इंसान की नहीं होती। मेरे दोस्तों, बाज़ औक़ात जिंदगी की सबसे बड़ी कमी किसी चीज की नहीं होती, बल्कि किसी एहसास की होती है। इंसान को ऐसे अल्फाज चाहिए होते हैं, या ऐसे अल्फाज की कमी होती है जो उसे समझ सकें, ऐसी निगाहों की कमी होती है। ऐसी निगाहों की कमी होती है जो बगैर कहे दिल का हाल जान ले। ऐसे साथ की कमी महसूस होती है जो हालात बदलने के बावजूद न बदले। इंसान हमेशा उस शख्स को नहीं ढूंढता जो खूबसूरत हो, लेकिन उस एहसास को तलाश करता है जहां से उसे अपनापन, सुकून और एतमान मिले। कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ दे देती है, मगर वो एक शख्स नहीं देती जिसके साथ हम अपनी खुशियां और खामोशियां बांट सके। और कभी ऐसा भी होता है कि वो शख्स मिल तो जाता है मगर वक्त साथ नहीं देता। तब इंसान समझता है कि जिंदगी सिर्फ मिल जाने का नाम नहीं है, बल्कि निभाने का, समझने का और एक दूसरे की कदर करने का नाम है। लेकिन मेरे स्वीट लेसन्स, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें हर सुबह एक नई उम्मीद देती है। ये सिखाती है कि हर अधूरी ख्वाहिश के बावजूद मुस्कराया जा सकता है, हर कमी के बावजूद शुक्र अदा किया जा सकता है। मैं लिसनर्स कुछ थोड़ा सा अधूरी ख्वाहिशात के हवाले से बात करना चाहता हूं। यहां पे मैं कहना चाहूंगा यहां पे कि शायद इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके दिल में कोई ना कोई अधूरी ख्वाहिश ना हो। किसी की ख्वाहिश किसी अपने से मिलने की होती है, किसी की ये ख्वाहिश होती है कि मैं कामयाब हो जाऊं। किसी की सुकून की ख्वाहिश होती है, किसी की मोहब्बत की ख्वाहिश होती है, किसी की सिर्फ इतनी सी आरजू होती है कि कोई उसे दिल से समझने वाला मिल जाए। मगर जिंदगी का हुसन इस तरह का है, शायद इसी में है कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती।
ادھوری خواہش ہمیشہ دکھ نہیں دیتی، بعض اوقات یہی ادھوری خواہش انسان کو محنت کرنا، دعا کرنا، صبر کرنا اور آگے بڑھنا بھی سکھاتی ہے. اگر ہر خواب آسانی سے پورا ہو جائے تو نہ جدوجہد کا مزہ باقی رہے، نہ کامیابی کی خوشی اور نہ ہی دوستوں. اگر میں تھوڑا سا اسے انداز میں دیکھوں تو لسنر چاہوں گا کہ بعض اوقات ان سب سے بڑی ادھوری خواہش کوئی شخص نہیں بلکہ ایک احساس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے بغیر کہے سمجھ لے، اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے خوابوں کو محسوس کر لے. لیکن زندگی ہر خواہش کو حقیقت نہیں بناتی، زندگی ہر خواہش کو حقیقت نہیں بناتی، اور یہی ادھورا پن بعض اوقات انسان کی شخصیت کو زیادہ گہرا فسرد بنا دیتا ہے. لسنرز، یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے دوستو، ہر ادھوری خواہش کو ناکامی نہ سمجھیے. کچھ خواہشیں اللہ تعالیٰ اس لیے پوری نہیں، ہمارے لیے بہتر فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں. کبھی وقت بہتر نہیں ہوتا، کبھی راستہ بہتر نہیں ہوتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت انجام لکھ چکے ہوتے ہیں. میں لسنرز کچھ تھوڑی سی اور بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، کچھ تھوڑی سی اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ دوستوں سے کہ

किसी मेहरबानी आके मेरी जिंदगी सजा दी। लेसन में किसी की मेहरबानी ने मेरी दुनिया बदल दी। वीरान दिल की बस्ती में उम्मीदों की शम्मा जला दी। जो दिल बरसों से खामोश था उसे फिर मुस्कुराना सिखा दिया। एक मुखलिस एहसास ने जीने की नई वजह बता दी।

मेरे मोहतरम सामीन, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी आमद शोर नहीं मचाते, लेकिन उनकी मौजूदगी खामोशी से पूरी जिंदगी बदल देती है। वो ना कोई बड़ा दावा करते हैं, ना खुद को खास साबित करने की कोशिश करते हैं, मगर उनका खलूस, उनका लहजा, उनकी दुआ और उनका एहतराम इंसान के दिल में ऐसी जगह बना लेता है जहां तक शायद लफ्ज भी नहीं पहुंच सकते। यही वो लम्हा होता है, या यही वो टाइम होता है जब इंसान भी इख्तियार किया उठता है कि किसी मेहरबान आके मेरी किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। और मेरे दिल की धड़कनों में नई आरजू जगा दे। जिंदगी में हर इंसान एक ऐसे एहसास का मुंतजर होता है ना, जो उसे ये बावर दिलाए, जो उसे ये यकीन दिलाए कि वो अहम है, उसकी कदर की जाती है, उसकी मौजूदगी किसी के लिए खुशी का बायस है। जब कोई इंसान बिना मतलब, बिना गर्ज, सिर्फ खलूस के साथ आपका हाल पूछ ले, आपकी खामोशी को समझ ले, आपकी परेशानी को महसूस कर ले, तो दिल में उम्मीद की एक नई शमा रोशन हो जाती है। यही एहसास जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। मोहब्बत की असल खूबसूरती भी यही है कि वो इंसान को बना दे। अगर किसी की मोहब्बत में एहतराम हो, दुआ हो, एतमाद हो, एक दूसरे की इज्जत हो, तो वो मोहब्बत सिर्फ दिल तक महदूद नहीं रहती बल्कि इंसान की निखार देती है। फिर इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि उसकी दुआओं में किसी और की खुशी भी शामिल हो जाती है। कभी कभी एक शख्स की आमद से जिंदगी की तमाम वीरानियां खत्म हो जाती हैं, तमाम वीरानियां मिट जाती हैं, लेकिन जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। पहले जो रास्ते सनसान लगते थे, वही रास्ते खूबसूरत महसूस होने लगते हैं। पहले जो शामें उदास होती थी, वही शामें उम्मीद का पैगाम बन जाती हैं। पहले जो दिल हर बात पर टूट जाता था, अब वही दिल मुस्कुराना सीख लेता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में अभी भी खलूस बाकी है। मेरे सामीन, मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी को हासिल कर लेना नहीं होता, बल्कि किसी की इज्जत करना, उसके ख्वाबों की कदर करना, उसके दुख को अपना दुख समझना, उसकी कामयाबी पर दिल से खुश होना मोहब्बत है। जो मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में हो, वो वक्त के साथ ख़त्म हो सकती है, लेकिन जो मोहब्बत किरदार में हो, वो वक्त गुजरने के साथ और मजबूत होती चल जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान को जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा वो शख्स नहीं लगता जो हर वक्त उसके साथ रहे, बल्कि वो शख्स लगता है जो उसके दिल में उम्मीद पैदा करे। दिल में उम्मीद पैदा करना ये कैसा है, इस बात पे अगर मैं बात करूं तो मैं यहां ये बात करना चाहूंगा कि

मैं दिल की उम्मीद के हाल से यहाँ कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ लिसनर्स। मेरे स्वीट लिसनर्स, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी जंग से गुजर रहा है। कोई अपने हालात से लड़ रहा है, कोई अपनी तन्हाई से, कोई अपने ख्वाबों के टूटने से, और कोई अपने नसीब से। ऐसे में अगर कोई इंसान हमारी जिंदगी में आकर हमारे दिल में उम्मीद का एक नन्ना सा चराग रोशन कर देना, तो यकीन जानिए कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, बल्कि अल्लाह की भेजी हुई एक नेमत बन जाता है। उम्मीद पैदा करना सिर्फ ये कहना नहीं होता कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद पैदा करना यह है कि जब पूरी दुनिया का साथ छूट जाए, जब पूरी दुनिया छोड़ दे, तब एक शख्स खामोशी से

हाथ थाम कर कहे कि मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, हिम्मत रखो। ये चंद अल्फाज बाज़ुकात एक बिखरे हुए इंसान को दोबारा जीने का हौसला देते हैं। मेरे दोस्तों, कुछ लोग हमारी जिंदगी में शोर मचाने नहीं आते, वो खामोशी से हमें या हमारे अंदर मर चुकी उम्मीदों को जिंदा करने आते हैं। वो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी दुआएं बाकी हैं, अभी रास्ते बाकी हैं, अभी ख्वाब बाकी हैं, अभी मुस्कुराने की वजह बाकी है। ऐसे लोग किस्मत वालों को नसीब होते हैं। कभी कभी इंसान बाहर से हंसता हुआ नजर आता है, लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट चुका होता है। वो किसी एक ऐसे शख्स का मुंतजर होता है जो उसके आंसू न देखे बल्कि उसके दिल का दर्द महसूस करे। जो ये ना पूछे कि क्या हुआ, बल्कि इतना कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यकीन मानिए, ये एक जुमला बहुत से जख्मों का मरहम बन जाता है। रोमानवी एहसास की दुनिया में भी उम्मीद सबसे खूबसूरत तोहफा है। मोहब्बत सिर्फ दिल धड़कने का नाम नहीं है, बल्कि किसी के दिल को ये यकीन दिलाने का नाम है कि तुम अकेले नहीं होते, बल्कि तुम्हारे साथ कोई होता है। जब कोई इंसान आपको एक उम्मीद दिलाता है, आपकी मायूसी में उम्मीद बन जाए, आपकी खामोशी को समझ ले, आपकी टूटी हुई हिम्मत को जोड़ दे, तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं करता बल्कि आपकी रूह को जीने का एक हौसला दे देता है। आपकी रूह को जीने का हौसला देता है। लेकिन मेरे सामने सबसे खूबसूरत उम्मीद वो है जो अल्लाह ताला से वाबस्ता हो। इंसान साथ छोड़ सकते हैं, इंसान साथ छोड़ देते हैं, हालात बदल सकते हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। इसलिए अगर कोई इंसान आपके दिल में उम्मीद जगाए तो उसकी कदर कीजिए, और अगर कभी आपको मौका मिले तो किसी टूटे हुए दिल में उम्मीद पैदा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके चंद मुखलिस अल्फाज किसी की पूरी जिंदगी बदल दें। आपके लफ्ज किसी की लाइफ बदल दें। लिसनर्स, कुछ थोड़ी सी और बातें भी करना चाहूंगा यहाँ पे, और इस सिलसिले को हम यहाँ पे क्लोज भी करेंगे। कुछ थोड़ी सी बातें और भी करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिसनर्स। मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा भाई, मेहरबानी, आप अगर अपने पैगाम करना चाहते हैं, हमें भिजवाना चाहते हैं अपने मैसेजेस, तो 0307 27 006 007 0307 27 0666 हमारे साथ दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम की तारीफ कर रही हैं। कुरतल्लैन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्गन बॉय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वॉइस इज सो क्यूट एंड वॉइस योर वॉइस योर शो बोथ आर वेरी नाइस एंड अमेजिंग ब्यूटीफुल। आई लाइक यू एंड योर वॉइस सो एलिगेंट। May Allah keep you happy and me Kurutalan from Saudi. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच Kurutalan, आपने हमारे साथ दिया। मरियम तनहा हमारे साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया सवाबी से, आपने हमारे साथ दिया। और इसके अलावा कायनात हमारे साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया कायनात आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर, प्रोग्राम इज नाइस एंड हिना मारिया आरफा ये भी प्रोग्राम सुन रही हैं और ये कह रही हैं कि
मेरे लिए अमानत ड्रामे का ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कोशिश करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया, और आपने कहाँ से हमारा साथ दिया, जगह का नाम आपने नहीं लिखा, सुब्राई का नाम, बड़ी मेहरबानी। जब भी अगर आप मैसेज करते हैं तो अपनी जगह का नाम जरूर लिखा करें, 03072700666, 03072700666। सबागुल हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबागुल, आपने हमारे साथ दिया। आप भी सवाबी से हमारे साथ दे रही हैं। अच्छा, ये किसका मैसेज आया है? आमना हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आमना, आपने हमारे साथ दिया। इसके अलावा आयशा हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, जैदा से आपने हमारे साथ दिया। हसीना हमारे साथ दे रही हैं सवाबी से, बहुत बहुत शुक्रिया हसीना, थैंक यू सो मच। हाय सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त है। मी इकरा, इकरा हमारे साथ दे रही हैं, इकरा ने जगह का नाम नहीं लिखा। सलाम स्वीट भैया, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। ताबीर मोमंद हमारे साथ दे रही हैं सवाबी से, बहुत बहुत शुक्रिया ताबीर मोमंद। और इसके अलावा सलाम ब्रदर, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है आपका। अहमद यूसुफजई हमारे साथ दे रहे हैं इटली से, बेसिकली ये सवाबी के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आपने हमारे साथ दिया इटली से, और आप थ्रू इंटरनेट हमारी आवाज सुन रहे हैं। खुशी खान हमारे साथ दे रही हैं, खुशी खान कह रही हैं कायनात को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये एक मैसेज आया, इसमें लिखा हुआ है कि हाय, हमें तो कोई झूठी उम्मीद भी नहीं दिलवाता, हमारी जिंदगी में सिर्फ गम है और बहुत ज्यादा गम है। ये किसका मैसेज है जी? अच्छा, ये ताहिरा हमारे साथ दे रही हैं, ताहिरा का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा, आपने हमारे साथ दिया। सलाम भाई, वालेकुम सलाम। अरूज हमारे साथ दे रही हैं सवाबी से, बहुत बहुत शुक्रिया अरूज, आपने हमारे साथ दिया। और भाई, प्रोग्राम अच्छा है, अंदाज भी आपका अच्छा है, तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड ये किसने मैसेज किया जी? अहमद हमारे साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद के, आपने हमारे साथ दिया। मैं यहाँ पे एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ जी, और ये ट्रैक आई होप कि आप समझें, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मोहब्बत शोर नहीं करती, जिनके जज्बात लफ्जों से ज्यादा उनके रवैयों में नजर आते हैं, अपनी मोहब्बत का ऐलान नहीं करते मगर उनका हर अंदाज ख्याल ही बताती है कि वो दिल में कितनी जगह रखते हैं। ऐसे में ही मतलब वो कहते हैं, कहा जाता है ना कि उनके अंदाज़ करम ही कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा मतलब जो है ना, उनका अंदाज़ करम होता है कि कभी वो एक मुस्कुराहट से दिन बना देते हैं, कभी एक दुआ से दिल को सुकून दे देते हैं, कभी एक खैरियत का पैगाम इतनी खुशी दे जाता है कि बरसों की उदासी भी हल्की महसूस होने लगती है। याद रखिएगा मेरी बात के, मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि कोई हर वक्त साथ रहे, मोहब्बत ये भी है कि कोई दूर रहकर भी आपकी खुशी के लिए दुआ करता रहे, आपकी कामयाबी पर दिल से मुस्कुराए और आपके दुख को अपनी खामोश दुआओं में समेट ले। मेरे मोहतरम सामीन, बाजू का जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां ना शिकायत की जा सकती है, ना किसी को कसूरवार ठहराया जा सकता है, इंसान सिर्फ खामोश होकर अपनी किस्मत देखता रह जाता है। इसी कैफियत को शायद ये एक मिसरा जो है ना बहुत खूबसूरती से बयान करता है, ये वाला मिसरा, वो भी अपने ना हुए और दिल भी गया हाथों से। मेरे दोस्तों, मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख

कि कोई दूर चला जाए, बल्कि ये है कि जिसे हमने अपना समझा वो कभी हमारा था ही नहीं। हम ख्वाब सजाते रहे, उम्मीदें बांधते रहे, दुआएं करते रहे, और एक दिन हकीकत ने आकर खामोशी से बता दिया कि बाद लोग सिर्फ जिंदगी से गुजरने के लिए आते हैं, हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आते। दिल अजीब चीज है, ये दलील नहीं है, एहसास से चलता है, ये हजार बार जानता है कि सामने वाला शायद हमारा नहीं है, फिर भी उसी के लिए धड़कता है, उसी के लिए जब दिल टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता बल्कि मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मेरे मोहतरम सामीन, हर अधूरी मोहब्बत नाकामी नहीं होती। बाज़ मोहब्बतें खुद को पहचानना सिखा देती हैं, बाज़ सब्र सिखा देती हैं, बाज़ दुआ का मतलब समझा देती हैं, और बाज़ हमें ये एहसास दिला देती हैं कि इंसानों से बढ़कर अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी से चला गया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदगी अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, और वही रब दिलों को जोड़ने पर भी कादर है, और टूटे हुए दिलों को सुकून देने पर भी। मैं आखिर में लेसन कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इसी बात के साथ फिर मैं आप लोगों से इजाजत भी लूंगा जी, आप लोगों से मतलब मैं यहाँ से रुख्सत भी लूंगा। कभी कभी इंसान मोहब्बत तो हार जाते हैं, लेकिन अगर वो अपना किरदार, अपनी इज्जत, अपना ईमान बचा ले तो हकीकत में वो हारा नहीं होता। मोहब्बत का मकसद इंसान को तोड़ना नहीं बल्कि संवारना होता है। अगर किसी ताल्लुक के खत्म होने के बाद आपने अपने इखलाक को खराब नहीं होने दिया तो यकीन जाने कि आप कामयाब रहे। अपनी जबान को गंदा नहीं होने दिया, अपने किरदार को दागदार नहीं होने दिया, अपने रब से ताल्लुक को मजबूत रखा तो यकीन माने कि आप हार नहीं माने, बल्कि जो है ना ये कि आप हारे नहीं हैं बल्कि सबसे ज्यादा मजबूत होकर निकल चुके हैं। याद रखिएगा कि जिंदगी में हर वो शख्स जो हमें छोड़कर चला जाए, जरूरी नहीं कि वो हमारी मंजिल भी ले जाए। बाज़ लोग सिर्फ एक बाब होते हैं, पूरी किताब नहीं होते हैं। बाज़ लोग सिर्फ एक सबक होते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। और बाज़ जुदाइयां अल्लाह ताला की ऐसी हिकमत होती हैं जिसे इंसान वक्त गुजरने के बाद ही समझ पाता है। अगर आज आप लोगों का दिल टूटा है, आंखें नम हैं, दुआएं खामोश हैं और उम्मीद कमजोर पड़ चुकी है तो मायूस मत होइएगा। रात जितनी भी तवील हो उसके बाद सुबह जरूर आती है। और आखिर में कहना चाहूंगा कि मोहब्बत में हार जाना शिकस्त नहीं होता, असल शिकस्त यह है कि इंसान अपने किरदार, अपनी इज्जत और अपने रब पर भरोसा खो दे। मोहब्बत में हार जाना शिकस्त नहीं होता, असल शिकस्त ये है लिसनर्स कि इंसान अपने किरदार, अपनी इज्जत, अपने रब पर भरोसा खो दे। ये जो तीनों बचा लेते हैं ना, वो वक्त के इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को सुकून नसीब फरमाए जी। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को सुकून, हमारे नसीबों को खैर, और हमारे रिश्तों को इखलास, और हमारी जिंदगियों को अपनी रहमत से भर दे। अगर इन बेवफा सांसों ने वफा की, जिंदगी ने बेवफाई ना की, तो फिर मिलेंगे सेम चैनल FM 94 रेडियो दिलबर सौबी से। तब तक के लिए जहाँ रहिए, जिधर रहिए, खुश रहिए। तल्दी पाकिस्तान, यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। द अल्लाह पामान एंड लव यू ऑल। गुड नाइट।